हर जी मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण कौन चितार अवगुण कौन चितार गल से ती लायक। ज्ञान रास नाम तन सौ प्यो इस सौदे लायक। सांझी गुरु नाल बहाले मैनू एक भाईवाली कराई मेरे वाहिगुरु ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नू मेरे नाल भाईवाल रला दिता यानी साडा दोवां दा सांझा हो गया उस विच। सांझी गुरु नाल

लैसी पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारक मुख मांगे सो देना पिता कृपाल आज्ञा ए दीनी बारक मुख मांगे सो देना नानक बारक दर्श प्रभ चाहे

तू सुचा समझ के लिया है ओ ता झूठ है किवें परमेश्वर ने 84 लाख जूना पैदा की थी।

पर फिर सोचे मना ए जेड़े फुल तू सुचे समझ के लिया है ए ता झूठे किवें जदों फुल खिड़दा है ता पवरा उन्हों सुंग जाना।

पर सोचे मना जेड़ा दूध तू सुचा समझ के खीर बनाई ए दूध ता झूठा है किस तरह जदू गां चोई दी वच्छा छड़ी दे वच्छा गां दे थान चुंग दे ते किटाणुआ दे सदका सारा दूध झूठा हो जाता है ए दूध झूठा खीर झूठी पाई मैं ठाकुर दी सेवा कादे नाल करा।

शेर दी आवाज आई। भगत जी उस पासे तुर पे, सामने शेर आया। शेर दी अखां दे विच अपनी अखां मिलाई।

इस तरह रम्य होया है जिस तरह दर्पण शीशे दे विच साडा चेहरा मौजूद है। जदों शीशा देखांगे सानू साडा मुंह नजर आवेगा। इसे तरह ही वो परमेश्वर है, जदों देखांगे

नानक डोलिया जापे वधी सवजग नानका सचा वेख सोए सबनी छाला मारिया करता करे सो होए।

तेरे दर्द तेगा दूर अगर तुआओ दोपहर तपे का सत अगर तुआओ कलयुग रथ अग्न का कूड़ अगर तुआओ शाम कैसे तुम्र सामी।

मेरा बिंद्रावन में रंग किया। कल में भेदिय चरण हुआ नाम खुदाई अलो भया, नील वस्त्र लै कपड़े पैरे तुर्क पठानी अमल किया।

पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सुमारिया उठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज करन मन भाव दे हर पुजन नाही हारिया कर फरमाए सिखाया वेख मैं।

और फिर अमृत नाम वाहिगुरु दा एक थाल है। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जिस दे विच बाणी असा कलयुगी जीवां दा उद्धार करन हित गुरु नानक ने कलयुगी जीवां नूं दित्ती है, मेहर कीती है पातशाह ने।

नौजवान कहने लगा, मेरे नाल ऐसी बीती कि मर्दा में बच के आ गई। मैं आख्या जे मर्दा बच के आए वेखी किधरे बचदा ना मर जाए। जदों सिख सोचन लग पैंदा मैं हुण बचना है, ते गुरु दे सिक्खी नूं तलांजली देनी शुरू कर दी, गुरु नूं पिठ देनी शुरू कर दी। ते मैं क्या वेखी किधरे बचदा ना मर जाए। गुरु कलगीधर दे सन्मुख रवि, गुरु तो बिना किसे कम नहीं आउणा। भाई गुरदास सिंह जी कहंदे

संता ने कीर्तन शुरू कर दिया। बैठे दो कड़ियां वास्ते पर भाई साहब लिखते ने आए संत ब्राह्मणे कीर्तन होवा रहन सबाई।

अपना काम भूल गए। जे राजे की मालिश कर ए ना गया राजा इनू सजा देवेगा। परमेश्वर ने आप सहन नाई

सत्संगत जी, सारी संगत, जिन्ने को सिख असी माई भाई हाजिर बैठे हैं, मैनु एक विश्वास होया है कि सतगुरु जिंदगी दी गल्लां, जिंदगी दे काम ते मनुख सारी जिंदगी करदा रहिंदा है, पर जिन्ने गुरसिख माई भाई तुसी हुण बैठे हो ना, अज एक ऐसा त्योहार है जो संसार विच सिख जगत का एक सब तो वड्डा ते महान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश उत्सव देख लो, असीं किन्ने पिछे हां, भावें कुछ भी है, लोगों कमां ते भी जरूर जाना होगा, ते फंक्शन केवल पौने 10 बजे तक सारा है, तां जिन्हां उत्ते गुरु साहब की बख्शिश हुई है उन्हां दी हाजरी लगी है। भाई दविंदर सिंह जी सिख जगत के बहुत वड्डे महान कीर्तनिया नहीं गायक, और तुसी अजे उस नूं नहीं सुनिया, अज मैं उन्हां नूं थले थोड़ा जिहा ताड़िया सी कि चंगी तरह गाणा है, टाल के नहीं जाना, क्योंकि सिख जगत विच साडे देश विच संगीत की कीमत घटी है गुरुद्वारियां च, इस वास्ते छड्ड ही गए कि आल इंडिया संगीत कॉन्फ्रेंस विच कलकत्ते, जिथे नजाकत सलाम तोरी, बड़े गुलाम अली खान सारे लोगों ने गाया, और इथे ए बंदा है सिखा विचो जिसने 2.5 घंटे करा गाया, 2.5 घंटे, और बड़ा वड्डा मान प्राप्त किया रेडियो स्टेशन सारयां ते, इन्हां दी बड़ी सत्कार इज्जत है, मेरे दिल विच इन्हां दा बहुत ज्यादा सत्कार है, एक बहुत वड्डे गुणी होने के नाते असीं त्यारे सुन सुना के सिखे हुए हां, इन्हां लोकां दा कोई मुकाबला नहीं। मैं ते अपने आप नूं विद्यार्थी समझदा, ते गुरु साहब दा एवें आसरा लैके ही शुरू होईदा है, ते इह बहुत वड्डे गुणी हन, सानूं बहुत खुशी होई है कि उन्हां दा ऐसे इहो जिहे मौके ते इसे तरह के चंगे गुणी बंदे जरूर सदने चाहीदे ने। सो मैनूं बहुत खुशी होई है कि तुसीं जिन्ने बैठे हुए हो सारे ओही हो कि जिन्हां नूं करीम किया जांदा है कि सारी चीज का तत् निचोड़, सियाने सियाने मनुख बैठे हो, ते थोड़ा चिर आप सतगुरु महाराज की बख्शिश लो ते गुरु ग्रंथ साहिब दी खुशियां हासिल करो।

सबे साख कुड़ावे डिठे पल्ले तेंडे लागी। सिख दा गुरु है श्री गुरु ग्रंथ साहब, और जो सिख गुरु ग्रंथ साहब दा ओट आसरा त्याग के किसे होर पासे जावेगा, किसे देवी देवते वल, होर किसे दी आशा मन विच रखेगा, कब्रां नू जाके पूजेगा, मणियां मसाणा विच जाएगा। आख्या जिवें बछड़ा अपने गऊ अपनी गऊ मां दे थणा नू छड के दूसरी गऊ दे थणा ते जाके जे दुध मंगेगा तो उसनू कदे उत्थों दुध नहीं मिलेगा, लत ही मिलेगी। साथ संगत बोलो श्री भाई गुरदास जी कहंदे हन, इसे तरह जे अपने गुरु दा ओट आसरा छड के जे दूसरे किसे पासे जावेगा तां भाई कदे पूरी नहीं पवेगी तेरी। बाबा नन सिंह जी महाराज कलेरा वाले आप क्या करदे सन, जे सिख दी गुरु ग्रंथ साहब ने पूरी ना पाई तां फिर कोई पा नहीं सकदा। साथ संगत बोलो श्री सिख दा गुरु है गुरु ग्रंथ साहब, सेवा कर तां गुरु ग्रंथ साहब दी, और जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब की सेवा की सारी सारी रात नाम जप के गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी विच खड़ो के बाबा नन सिंह जी ने नाम जपया, ते फिर गुरु ग्रंथ साहब विचों गुरु नानक नू प्रगट करके दर्शन कीते। सात सगत बोलो श्री भाई बहना जी, सेवा करके ही गुरु नानक दे कोलों बख्शीशां लै गए, गुरता गद्दी लै गए। गुरु नानक दे घर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती तां उहदी मनोकामना पूरियां होणी। जे गुरु नानक दे घर दी सेवा किसे ने निष्कामता दे नाल कीती तां गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। सात संगत बोलो श्री भाई लैणा जी, निष्कामता दे नाल सेवा करदे दिन रात, फिर ओ दिन आया जदों गुरु नानक ने अपने हिरदे नाल ला के आख्या, लैणिया भाई तू लेना है ते असी तेरा देना है। इस वास्ते अज तो अपने अंग नाल ला के गुरु नानक ने लेने नू अंगत कर देता, अपनी जोत गुरु अंगत दे हिरदे विच रख दिती, ते आख्या हुण तू खंडूर विच जाके संगतां नू नाम जपाओ। गुरु अंगत देव जी खंडूर दी धरती ते बैठे हर वेले यही अरदास करम, सेवी साहिब अपना अवर न जाचो कोई, हे गुरु नानक जदों दा मैं तेनू वेख्या है तेरी सेवा कीती है हुण मैनू अखां विच होर कोई जचदा ही नहीं। सेवी साहिब अपना अवर न जाचो कोई, नानक तांका दास है बिंद बिंद चुख चुख होए। रोज अमृत वेले उठ के साहिब जी उथे संगतां नू दर्शन देंदे हन, नाल कीर्तन नाल जोड़दे हन। एक दिन अमृत वेले दा समा गुरु अंगद दे पातशाह खंडूर दी धरती ते बह के दीवान सजाया, ए शब्द गा रहे सेवी साहिब अपना वरना जाचो कोई, तां भाई बाला गुरु अंगद दे पातशाह दे दर्शन करन आया के मैं वेखां ओ कौन पुरख है जिसने गुरु नानक नू भी जित लिया है, जिसने गुरु नानक दा हिरदा जित लिया है। जदों भाई बाला जी आए दीवान विच साहब जी शब्द नाल गा गा के झूम रहे, और जिस वेले गुरु अंगद दे पातशाह दियां अखां खुलदियां सन भाई बाले ते जा पैंदियां। साहब जी ने थोड़ी देर बाद अपने कोल बुलाया ते पुछया, भाई कौन है, कित्थों आए हैं? भाई बाले ने हाथ जोड़ के आख्या, गरीब निवाज मेरा नाम भाई बाला है और मैं सारी उम्र गुरु नानक पातशाह दे नाल रह के उन्हां दी सेवा कीती है। जदों गुरु अंगद दे पातशाह ने सुनिया भाई बाला, उठ के खड़ो गए, हिरदे नाल ला लिया, आख्या तू बाला।

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वणतरण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जालो ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, धुन आप वजाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तप तापे, आपे

आपे धरती आप है राहक आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे ठिंगा आपे चुली भरावे आपे संगत

कहूं पवन है के बहे बेग ऐसे कहे मोन आवे कथो ताह कैसे कहूं नाद है के भली भांत बाजे कहूं पार दी है धरे बान राजे।

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी होय के मांगत फिरत भीख, कहूं महादान होय के मांगो धन देत हो।

कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देते हो। कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी से, कहूँ इंद्र पदवी छिपाए छीन लेते हो। कतहूँ

कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने भगत कबीर साहब का उचारिया होया ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे विच।

तीन बंदा विच इस तरह वंडदे हन। हे भाई, जे कोई मनुख अपने आप नू गुरु दे हवाले करदा है, ओ प्रकाश रूप परमात्मा दे मेल दी अवस्था नू समझ लैंदा है। उस दे अंदर जोत जग पैंदी है, उस दे अंदर राम दा प्रकाश हो जांदा है। पर इस अवस्था नाल जान पछाण करन वाला हुंदा कोई विरला ही है। गुरु दे सन्मुख होए अजिहे मनुख नूं इह समझ आ जांदी है कि संसार एक रुख समान है।

संसार अमृत दी एक बगीची है, जो उस पूर्ण परमात्मा ने बनाई है। जिवें एक पौरा फुल दे रस विच मस्त होके फुल दियां खिड़ियां पत्तियां विच अपने आप नूं जा बनाउंदा है, जिवें कोई पंछी अपने खंभां नाल हवा नूं उलारा दे के आकाश विच उड़दा है, तिवें ओह गुरमुख नाम रस विच मस्त होके पूर्ण खड़ाओ नूं अपने हिरदे विच टिकांदा है ते सोच मंडल विच हुलारा दे के प्रभु चरणा विच उड़ारी लांदा है। उस गुरमुख दी उस अडोल अफुर अवस्था विच उस दे अंदर कोमलता रूप मानो एक कोमल बूटा उगदा है, जो उस दे शरीर दी तृष्णा नूं सुका दिंदा है। कबीर साहब कहंदे ने, मैं उस इंसान दा उस गुरमुख दा दास हां जिसने अपने अंदर उग्या होया एक कोमल बूटा देखा है। सात संगत, ए ब्रह्म ज्ञान दी अवस्था दा शब्द है जेड़ा इस कहानी नूं जान लैंदा है कि परमेश्वर दे नाल गुरु मेल करांदा है और परमेश्वर दे नाल जद मेल हो जाए

मन दी हर तृष्णा खत्म हो गई, क्योंकि नाम जिहड़ा है यह सारिया भुखां तृष्णावां खत्म कर देंदा। हर इंसान एक चीज मिले तो दूसरे की इच्छा मन विच पैदा होती है। हर इंसान भज रहा है, जिद कोल एक चीज है उसनु दूसरी चीज की लोड़ है। एक देश का जी राजा है, राजा बन के भी उन्हें तसली नहीं, कुछ होर चाहता। कोई वजीर है, वजीरी लेके भी वो रजिया नहीं, कुछ होर चाहता। हर इंसान भज रहा है, पर सतगुरु जी कह रहे हैं सुख नाही बहुते धन खाटे। सुख बहुती माया विच भी नहीं।

गुरु बाणी है, क्योंकि बाणी गुरु देंदा है। इसे करके सतगुरा ने इंसान नु कहा, किसे दे तारी दे पिछे ना लगो, बाणी नाल जुड़ो, क्योंकि बाणी परमेश्वर दी है। जो परमेश्वर कहंदे गुरु ओहो ही उपदेश करदा है। ते गुरु कहंदे तुसी मेनू परमेश्वर ना कहो, मैं भी परमेश्वर दा भेजिया आया, मैं ते परमेश्वर दा सुनेहा तुहानू देना है, ते तुसी भी परमेश्वर नाल जुड़ो। ए बाणी मेरी नहीं, ए परमेश्वर दी बाणी। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान विला लो। जेड़ा इंसान, जेड़ा पीर पैगंबर अपने नाल जोड़े कि सब कुछ मैं हां, मैं परमेश्वर हां, समझो ओ परमेश्वर तू भुलिया होया। ते जेड़ा परमेश्वर नाल जोड़े असल विच, समझो ए परमेश्वर नाल जुड़िया होया है, क्योंकि ए परमेश्वर नाल जोड़ रहे हैं। ते सतगुरु जी कहंदे ने, ए देवी देवते अवतार पीर पैगंबर, सारियां नूं इक परमेश्वर भेजण वाला है, इक अल्लाह इक वाहिगुरु संसार ते भेजण वाला है, इस करके ओहदे नाल जुड़ो। गुरु इन्हां गल्लां दा ज्ञान करांदा है कि मेल करना है तां परमेश्वर नाल करो। ते सतगुरु जी फरमांदे हन, गुरु दा मेल किन्ना जरूरी।

सूरज चढ़े, कितना चानना कितनी रोशनी होंदी है एक सूरज दे चढ़न ते। अगर हजार सूरज भी चढ़ पवे, सौ चंद्रमा भी रोशनी देवे, तामी मन दे विच हनेरा रहिंदा है अगर मन विच ज्ञान नहीं। कई बारी आपां देखदे हां एयर कंडीशन कमरे हुंदे ने पर अंदर बैठा इंसान सड़ रहा हुंदा है गुस्से दे नाल, उहदे मन नूं चैन नहीं हुंदा। रोशनी विच इंसान बैठा भी अंधेरे विच हुंदा है, अंधेरा केड़ा? अज्ञान दा। अज्ञान की है? अज्ञान ए है कि दूसरे दा हक मैं खावां, अपने सुख वास्ते दूसरे दा हक खाना, दूसरे नूं दुख देना, ए है अज्ञान। ते ज्ञान की है? ज्ञान ए है कि भाई सारे विच परमेश्वर है, सारे विच खुदा है, वाहेगुरु है, जे सारे विच ओ है फिर ते मैं सारे नाल प्यार करांगा। इन्हां गल्लां दी सोझी

हजार सूरज होवे सौ चंद्रमा होवे पर जे गुरु नहीं मिलिया ता इस चाननी दा क्या फायदा जे मन दे विच ज्ञान नहीं मन विच अज्ञान है।

जितनी माया तेनू दिती है उतनी तू लै, जितनी माया मेनू मिली है वो मेरे कोल रहन। पर ब्रह्मा छोटा भरा कहन लगा, सेठ ने तेनू वड्डा समझ के ज्यादा माया दी, मेनू छोटा समझ के थोड़ी माया दिती। पावे उन्हें माया तेनू बहुती मेनू थोड़ी दिती, पर गए थे आप इकट्ठे से, इस करके असी बराबर हिस्सा करना। और पैसे तू झगड़ा हो गए, और झगड़ा होंदा भी अक्सर देखते हैं। देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधरी और माया दे पीछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं। इस वास्ते नहीं कि उन्हां नूं कोई सेवा दा चा है, बहुत घट होंदे हैं सेवा वाले, बहुते ते अपने स्वार्थ वास्ते ए नारा लगांदे ने असां सेवा करनी है। नारियां दे नाल सेवा नहीं होंदी, सेवा ते मन होंदी। हुण मन विच लालच, दोनों भरा हैगे ने भगत, पर माया पिछे लड़ पे। ए लड़ाई इथों तक जा पहुंची, वड्डे भरा ने श्राप दे दिता, ब्रह्मा तू लालच कीता, अगला जन्म तेरा तंदुए दा होवेगा। पानी विच रह के, पानी दे विच रहन वाले जीवां नूं खा के अपनी लालच वाली ए बिरती पूरी करेगा। हुण ब्रह्मा ने भी तप कीता, उसनूं भी गुस्सा आया, उसने भी श्राप दे दिता। कहन लगा, ठीक है भरा, जे मैं मर जाना तो जिंदा तू भी नहीं रहेगा, तेरी भी मौत होवेगी, तू जंगल दा मस्त हाथी बनेगा। और जंगल विच पटकदा पटकदा एक दिन उसे जगह आवेगा जिथे मैं होवांगा। मैं पानी दे विच होवांगा, तू पानी पीण आवेगा, ते मैं फिर अपनी तारां दे नाल तेरियां लत्तां पकड़ के उथे पानी दे विच मैं तेनू गोते दे दे के मारांगा, और इस गल का बदला लवांगा कि तू मैनू श्राप दिता है। ने भगत पर माया विच आ गई, और माया ने दोनों नू भगती दे थां तू थले सुट दिता। समा आया, दोनों दी मौत हुई, वड्डा मस्ताथी बन गया और छोटा तंदुआ बन गया। इस गल नू गुरबाणी विच भी साहब जी बयान करते हैं, राम गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो, कार ऊपर कढ़ निस्तारे, गज पत पार उतारे। अनेकां शब्दां विच इस शाखी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच और हिंदू पुराणा दे विच आंदा। एक भरा हाथी बनिया, एक तंदुआ बनिया, और वो समा आया होता जिहड़ा हाथी बनिया सी, बहुत सारे हाथी इहदे नाल ने। ए जंगल विच फिरदा फिरांदा गंडका नदी दे डुम दे आ पहुंचिया। गर्मी सी, नदी दे विच जद वड़िया और किनारे ते धुप करके पानी गर्म सी,

लक्षण बदल गए, सुलक्षणे हो गए, शुभ लक्षण हो गए। लक्षण कहते ने जो कुछ नजर आता है, मनुख की अंदर की रहनी जिस वे बाहर आ जाती है लक्षण कहाउंदी। सतगुरु क्योंकि मनुख की रहनी सुधार देंदे ने, इस करके जबान मिठी हो गई लक्षण चंगा है, चाल ठीक हो गई करते पुरख ताल दिवाया, जिंदगी ताल विच आ गई, बेताली जिंदगी ताल विच आ गई, चाल ठीक हो गई। और एक कहने लक्षण जेड़े ने रफ्तार दस्तार गुफ्तार यही तो गल्लां होंदियां ने जिन्हां तों बंदा पछाणिया जांदा। पग किहो जी बनदा है, भाव इस नूं अपने सजन सजाउण दा ख्याल भी है कि नहीं। और यही वजह है कि लोग तां कहंदे ने पग बननी, लेकिन गुरु का सिख कहंदा दस्तार सजाउणी है, क्योंकि उन्हूं बड़ा ख्याल है कि मेरे सजन दा सवाल है, मैं सजिया सजाया गया ते सज के रहना मेरा काम। दस्तार तो पता लगता है इस बंदे दी रहनी बहनी की है, भाव वस्त्र पाउण तो रहनी बहनी तो मनुख दे अंदर दी सफाई दा ते अपने आप नूं बना के रखण दी रुचि दा पता लगता है, चाल तो पता लगता है इनू तुरना आउंदा है, चाल तो ही चाल चलन दा भी पता लगता है, ते गुफ्तार तो जबान तो बोलन तो भी पता लगता है इस दे अंदर की है। जो जीए होए सो उगवे, जबान तो ही निकलेगा जो अंदर है, अंदर बाणी है ते मुंह बाणी निकलेगी, अंदर प्यार है ते मुंह प्यार निकलेगा, अंदर नफरत है ते मुंह गाला निकलेगी। सतगुरु की कृपा दे नाल मनुख दे लक्षण बदलते, पर उदों बदलते जदों गुरु के मार्ग पै जाए।